0: 面临化肥短缺、燃料价格上涨的困境，印度农业生产成本随之上涨，或将带来全面的食品通胀。
1: 由于国际供应链受阻，印度农民急需的尿素等基础肥料近日出现了严重的供应短缺。为了应对危机，部分地区基层政府农业机构采取了配额限制。
2: खेती सेक्टर में क्या हो रहा है अभी यूरिया बंद हो गया है डाई की सप्लाई बंद हो गई है हमारे ही गांव में जिस आदमी को मतलब 10-10-20-20 बोरी डाई की और यूरिया की मिल जाती थी वहां एक-एक एकड़ वाले को एक-एक दो-दो बोरी से सीमित किया जा रहा है वो डायरेक्टली बोल रहे हैं जो खेतीबाड़ी सहकारी सभा वाले हैं अभी हमारे पास यूरिया नहीं है
1: 供应链受阻也直接影响了印度化肥和农药生产原材料的进口，从而导致复合肥的价格不断攀升，进一步挤压农户生存空间。
3: जैसे कि पेस्टिसाइड के जो कंटेंट्स है वो बाहर से इंपोर्ट होते हैं उसमें ये वार के कारण काफी दिक्कतें आ रही है उसके कारण पेस्टिसाइड के दाम काफी 20-25% तक बढ़ चुके हैं और भी बढ़ने के आसार है डीएपी और यूरिया ये जो किसानों के काफी पसंदीदा खत है इसका वार के कारण इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है तो उसकी वजह से किसान काफी परेशान है बाकी जो कॉम्प्लेक्स है उसके रेट काफी ज्यादा है तो किसानों को वो बेयर नहीं कर सकते
1: 现代农业生产高度依赖机械化而国际能源市场的剧烈波动直接拉高了田间地头农机使用的成本从而导致农业生产成本激增
2: Middle East में वार चल रहा है इसकी वजह से पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़े गैस के दाम बढ़ने की वजह से इधर जो ट्रांसपोर्टेशन है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी वो बहुत सारे बढ़ गए और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ने से इधर जो खेती में जो काम करने वाले ट्रैक्टर है और जो लोग है उनके भी चार्जेस बहुत सारे बढ़ गए
1: 生产成本的全面拉高最终只能由市场来买单近日印度化肥短缺带来的被动减产加上高昂的机械运转费用正在形成一条清晰的通胀传导链条
4: shortage आती भी है तो जिम्मेदार को बीजने में दिक्कत आएगी उसकी फसल कम निकलेगी मंडी में भी कम आएगी जब मंडी में कम आएगी तो उसका दाम है बढ़ सकता है जो कीमत में थोड़ा सा उछाल आ सकता है तो आम पब्लिक के ऊपर पड़ेगा वो
5: 印度外交部12号召见美国驻印度大使馆临时代办，就美军近日多次在阿曼湾攻击载有印度籍船员的邮轮，并导致三名印度船员死亡提出抗议。印度外交部要求美方临时代办向美国政府转达印方的严重关切，并确保美军在行动中采取一切必要措施，防止平民生命损失。这是印度外交部继10号后第二次召见美国驻印度使馆临时代办。再来关注俄乌冲突，俄罗斯国防部12号发布一周战报称，6月6号到12号，俄军控制了哈尔科夫以及顿涅茨克地区的5个军民点。俄军使用高精度武器和攻击性无人机实施了2次大规模打击和5次集群打击。打击目标包括乌军使用的能源、交通和港口基础设施、军用机场、弹药库等目标。
0: 乌克兰武装部队总参谋部12号称，当天凌晨，乌国防军对俄罗斯达吉斯坦共和国和萨马拉州的能源设施，以及俄军位于顿涅茨克、扎波罗热和卢甘斯克等地区的军事和后勤设施发动了袭击。七国集团峰会将于15号到17号在法国小城埃维昂莱班举行，而在距离该地数十公里的日内瓦，商家为了防止峰会期间的骚乱造成破坏，纷纷给玻璃窗加装了防护板，全程备战，氛围拉满。
1: 日内瓦是进出埃维昂莱班的交通门户，参加七国集团峰会的许多代表团都将乘飞机抵达日内瓦，再乘车前往埃维昂莱班。在七国集团峰会期间，预计大规模抗议活动将在日内瓦举行。目前日内瓦政府已经批准了14号下午的抗议七国集团峰会大规模游行，警方预计有上万人会参加，其他未被批准的游行则无从预测。近日日内瓦市中心、火车站以及主要商业街的商家纷纷开始加装防护板，以防抗议游行转变成骚乱。
6: par rapport à, vous savez, c'est pas forcément plaisant pour les clients de manger en même temps d'écouter les travaux, etc. Surtout avec la poussière du bois, en fait, parce que nous,